राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग भैरव करही पंच रागनी संग उच रही प्रथम

करीम सोए रासत रहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही को गुर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पै अनेको भ्रमाओ है देवता देव जा जगंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

ते कनु कगोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर गूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नाभ बीज अच बच को करेंगे भज, केतक प्रत्यच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मदीना मक्का निवासी, केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त, केत सुआ पे चढ़त केत दुह को भरत है। गैर में उड़त केत जल में रहत, केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जाप सी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चोआचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मडी मटली बहारे, वितन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित।

व्याधंग गाधंग स्वरूप अखंड प्रतावाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे।

न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

ंगहू बरम प्रज्ञा कहू सर्व भूपं कहू नेह गृहंगहू देह दोखंगहू औखदि रोग के सोख सोखंगहू देव विद्या कहू दैत बानी कहू जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहू राज से सात के तामसी हो कहू जोग विद्या धरे तापसी हो कहू रोग रहता कहू जोग जुगतं कहू भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जज विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या।

कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ सूत से खं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हूँ कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हूँ कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ।

कहूँ रित विद्या कहूँ नाग बाने कहूँ गारड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ शैल शाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजन

अजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत सात्रत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्ग दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही बजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदवतास पायत अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदवदेश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हूँ मर

जिह जात न बात न मात बितंग जिह रचें छत्रि छत्र शितंग जिह राग न रेख न रोग भणंग जिह द्वैख न दाग न दोख गणंग जिह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग रंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जम पह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पान गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास की।

भेवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है सदैव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के भिके सदैव करम परम है। अद्वेक है अभेक है, अलेख नाथ जानिए सदैव सर्व ठौर में, विशेक आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत कह बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है।

न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जाच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साहगो कुमार है, न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न

काल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के

नकाल है न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अनंज है अभंज है, अवरम है अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चयन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा, छिज तेज मानिए।

न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गाद है न व्याद को विचार है,

सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्तदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषेकिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए नजात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे।

सहज नाम सहंस वरण है नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दान सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महा

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच बछरव पार, सोत सोत थके महासुर।

खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजानन सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल।

अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी महासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत।

चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक फटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे बत दो दारे मुंड मथे जाय जाय उसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन।

दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जिहि नित नेज सब भेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट सूरत।

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जय रूप रेह कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म का।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया बहमान के बढ़ैया ओसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल देव गोर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मराठा मंगेरे तेरी मान सो तपस्या करे देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रूहेले माघ देश के मंगेले वीर बंग सी बुदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गो न गावे चीर मचीन के शीस न्याव तिबते दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोह जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हथी की पुकार पल पाछे पहुँचत दाहे जिट की जिंघार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास

जंत्र हू न जात जाके बाप हू न मायता के पूर्ण न प्रभा के सो छटा के अन मानिए तेज हूँ को तंत्र है गराज सी को जंत्र है के मुंह होने को मंत्र है नि जंत्र के खजानी है तेज हूँ को तार है गराज सी को सार है के सुतता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है।

को जंत्र है, के तेज हूं को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हूं का घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, मान को देवैया है, जब जाल को कटैया है, ये कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, मही बन को मंड है, के स्त्री है न नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, भाई या न पार पार पार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमाल का वह बसी हल विद्या पूर्व बिना पार पावया सत्य नाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, धरैया ध्रुम छाल के, कामना के कार है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरा वध चाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छव काल द्रिक गूल के, हंसने से सिंहारू मही रसी उसना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के, जम्बासी चंदेरी गुड चांदनी सी चंदगढ़ कीर तत्ती हरी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बोर शीशा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग थार बकांसी बिलंदवाद कीरत तिहार की ओजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी सिके तुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गाइयत है, भगरी कंधारी गोर का खरी करते जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराज जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताप नाथ।